चलो चलो दगड़ी दगड़ी दगड़ी दगड़ी चल चलो चलो दगड़ी दगड़ी दगड़ी दगड़ी चल चलो चलो नाल गाल कुदिरै नल्लदोरु पादयिल नन्दाग नडकुदु ओडुदु नाल गाल कुदिरै नल्लदोरु पादयिल नन्दाग नडकुदु ओडुदु நாகரீகம் அடைந்த ரெண்டு கால் குதிரை நல்வழியில் நட